थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाष्य समाचार एजे उपेश पाखी ने नाति थौ नेपाल सम्बत चिन्स सौ पी कुद दिलागा एकादशी हलिन्यङ्क आदिवासी जनजातीय अधिकार मसिका संस्कृति ओ जीवन पद्धति संरक्षण ओ उमिगु पङ्ग बारे विश्वव्यापी चेतना तब्याकुगु तातुना थौ हलिन्यङ्क थिथि देशे हलि आदिवासी दिवस थिथि ज्याजुना हनाचङ्गुदु नेपालेन थिथि कथ आदिवासी जनजाति तेस थो दिवस हनाचङ्गुदु सन् 1994 डिसेम्बर 23 संयुक्त राष्ट्र संघ या महासभा दपतिक अगस्त 9 या त हलि आदिवासी दिवस रूपमा हनेगु कोचुगु ख संयुक्त राष्ट्र संघ या कथ हलिन्यङ्क गुइगु देशे थियमथ पी हेगु करोड खुइगु लाख आदिवासी जनजाति दु हलिया छगु प्रतिशत खुगु प्रतिशत आदिवासी दुधासा हलिया गरिब मध्ये चिन न्यागु प्रतिशत आदिवासी जनजाति दु हलिन्यङ्क नेदो भ्या मध्ये अपो भ्या आदिवासी पिन्छ लाई धासा न्यादो संस्कृति आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व यनाचुङ्गु दु सरकार हाक्न हेटौँडा कापो उद्योग परिचय रूप न्याकुगुदो उद्योग न्याकेगो भाला कागु नेपाली सेना आतक छिगो तान परिचय रूप न्याकुगुदो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साँचु उद्योग ओ सस्ताने आशा या फैगो कत लिचो प्याहागु नितनादिगुदो प्रधानमन्त्री साँच सामाजिक सञ्जाल पाखी मिक नेपाल औषधि लिमिटेड हेटौडा कापो उद्योग नेपाल वायुसेवा निगम दुग्ध विकास संस्थान ओ सिंहदरबार वैद्य खाने लिपाङ्गु इले बालागु ओ भिङ्गु ज्या ह्यागु नितनादिगु ख प्रधानमन्त्री शाह सरकार राष्ट्रिय उद्योग ओ संस्थान यात नुदायना ह्याकु गुली बालागु लिचो प्याओगु नितनादिगु ख मधेस नाप थिथि हेगु पार्टी अग्रगामी मोर्चा घोषणा यागुदु जनता समाज पार्टी नेपाल जनमत पार्टी आम जनता पार्टी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी ओ बहुजन एकता पार्टी नेपाल मिग अग्राम मोर्चा घोषणा यागु ख मधेस थरहट दलित ओ उत्पीडित वर्ग ओ सीमान्तकृत समुदाय अधिकार नीति क्रियाशील दल ओ नेता पिन्स एकीकृत जुया मोर्चा घोषणा यानादिगु ख मोर्चा घोषणा सभा जनता समाजवादी पार्टी जसबाय नाय उपेन्द्र यादव लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसोपाय नाय महन्त ठाकुर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रोलोपाय नेता जनार्दन शर्मा ओ नाय सन्तोष परियार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाया रेशम चौधरी जनमत या सिके राउत पिनिगु बोती दुगु ख सरकार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ओ नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाने पदाधिकारी ल्याउगु दु प्रधानमन्त्री बालेन सान प्रज्ञा प्रतिष्ठाने पदाधिकारी नियुक्त यनादिगु संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पिथनादिगु प्रेस विज्ञप्ति नेतनातगुदु नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठाने कुलपति पदे कुमार नगरकोटी उपकुलपति अविनाश श्रेष्ठ ओ छ्यान्जे दुज कथ रोशन शेरचन नियुक्त जुयादिगुदु अथे ललित कला प्राज्ञ प्रतिष्ठाने कुलपति पदे एरिना ताम्राकार उपकुलपति चन्द्रश्याम डङ्गोल ओ दुज छ्यान्जे कथ कैलाश कुमार श्रेष्ठ नियुक्त जुयादिगुदु अथे नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाने कुलपति पदे ब्रजेश खनाल उपकुलपति पदे झुमा बनेम ओ दुज छ्यान्जेसँग भूपेन्द्र सिंह राई माझी नियुक्त जुयादिगुदु मधिक वोगु वा या हुनी दे या तिथि लाग्या खुसीबा ओ चल या हुनी प्रमुख राजमार्ग ओ सडक खण्ड यातायात लिचो लागुदु गण सडक पोङ्क तिगु दुधासा गण बहनी यातायात चले याके मबिगु कोचिना तगुदु काभ्री पलाञ्चोक सिन्धुली स्वाइगु बिपी राजमार्ग मकवानपुर या कान्ति लोकपथ बहनी तिना तगुदु अथे इलामे मेची राजमार्ग सिन्धु पाल्चोक अरुणीको राजमार्ग नप पोटेकोसी दुई लिपिङे सडक तिना तगु थागुदु
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल याक्न साल झण्डी सडक खण्ड ढोरपाटङ सडक आयोजना याक्न कोचाइगुन यतादिगुदो साल झण्डी सडक सन्धि खड्क ढोरपाटङ सडक आयोजना स्थलगत अनुगमन या झोले अग्रखाँची या सन्धि खर्के सञ्चारकर्मी पिनाप खल नादिसे मन्त्री लम्साल याक्न सडक कोचाकेगु नेतनादिगु ख। महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राष्ट्रिय दलित आयोग सिफारिस यागु थर तेगु धल पित्ना स्वापु तैपिन्त सुझाव बित इनाप यागुदो राष्ट्रिय दलित आयोग प्रचलित कानुन कथ दलित समुदाय थर त सूचीकरण या नीति सिफारिस नाप मन्त्रालय त थल छोगु ख। नेपाल चीन व्यापार प्रमुख नाका तातो पनि सोया ता इलनिसे अवरुद्ध जुया चङ्गुदु तातोपनि भन्सार ज्याकुतिय प्रमुख भन्सार अधिकृत दिपेन्द्र प्रकाश गिरी थिति थासे वङ्गु चलख लाना नेपा व चिन दथुया वैदेशिक व्यापारे तक लिचो लाकुगु नेतना दिगु ख। नसा जोरे या त छेलिगु एलपी ग्यास या हाकु बजा यागु दोपने खोपे छमेसित नेपाल प्रहरी जोङ्गुदो उपभोक्ता तेत छग सिलिन्डर नेदो दर ग्यास म्या चङ्गु धाइगु सुच या लिदसे खोप या चाँगु नारायण नगरपालिका दुई दुवा कोटे नेन हेद दुम तुलसी राम त्वेना या त प्रहरी जोङ्गु ख। उगु किराना पसल सोग सिलिन्डर नियन्त्रण कागु जिल्ला प्रहरी परिसर खोप या प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक कुमार कार्की धाइदिगु ख। म्याग्दिया बेनी दुगु प्रदेश अस्पताल डायलासिस सेवा तब्याकु गुदु गण्डकी प्रदेश सरकार ग्वाली स अस्पताल डायलासिस सेवा तब्याकु गुली म्याग्दिया जलाशय लोगिपिन्त अपुगुदु थो या झ डायलेसिया नीति पोखरा पर्वत बागलुङ गो ये या अस्पताल उनी मागु बाध्यता दुगु ख। उच्च शिक्षा गुणस्तर अपुगेको नीति नीतिगत व कानुनी कथ पिङ्केगु विश्वविद्यालय सङ्घका भर्ना विकास व पदोन्नति प्रणाली त सक्सिन खनेदैगु याना समावेशी याना लिचो पिख्यागु कत निनुयङ्क नीति कार्यशाला भिग पुङ्गुदु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय गोसेन यागु कार्यशाला बोतिका पि वक्ता पिस थथगु नीति व कानुन या यी कथ पिङ्कु से प्रमाण व तथ्य लिदस्या कोचिना जकर प्रणाली पिङ्के फैगु कैलाली बाल्टिने दुगु लखे दबे जुया छम मचा अस्सीगुदु जिल्लाया घोडागुडी नगरपालिका चार जनकपुरे स्थानीय दीपक सुवेदिया दत्या दुमका रामु सुवेदी बाल्टिने डबे जुया मडुगु ख। पलाता गाउँपालिका थिर्पु कालीकोट पलाता अस्पतालले जाइना दिपी चिकित्सक नर्स या त दापी सोमेसित नेपाल प्रहरी जोङ्गुदु पलाता गाउँपालिका नौ कालीकोट थिर्पु या श्री न्यादो दुम सुशील बम श्री निद दुम मैना बम हो श्री द दुम तपेन्द्र बम या त जोङ्गु जिल्ला प्रहरी ज्याकु कालीकोट या प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हिम बहादुर खत्री धाइदिगु ख। सुशील व मैना बम शुक्रबार मेडिकल अधिकारी डाक्टर अली हैदर वैन व नर्स शान्ता गिरी या त ला तगु ख। नेपाल भाषा सङ्किपा गुन्केरा सुवा या विशेष सो मिक किर्तिपुर सिनेप्लेक्से कोचागुदु थुगु सङ्किपा निर्माता केदार प्रसाद तुहाना बासु ख धासा निर्देशक अभे श्लोक साहकार शैली श्रेष्ठ लुबु ख। छिगु समाज बोल्न चुङ्गु तमी व चिमिया विभेद थगुहे छेज दुनिन दया चुनिगु सङ्किपा नेतना तगुदु। ए महानगरपालिका 27 इनाभा अन्नपूर्ण स्कुल युने रवि महर्चन या छेमी च्यागुदु पेतेजा उगु छेम हिग हिनेसिया निता इले मि मर्द सर्जुया मि च्यागु खसिडुगुदु थते मि च्यावे ए महानगर प्रहरी बल महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्ग प्रहरी परिसर नेपाली सेना रन भैरव गन हनुमान ढोका सशस्त्र प्रहरी कमान्डे हिने नितात्या इले मि नियन्त्रण कागु ख। मि च्यागु नीति न्यागो डमकल ल ट्याङ्कर छ्यागु ख। मि च्याना सुङ्गु तल्ला पूर्ण रूप क्षति जुगु धागुदु।
भारतीय उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेशीय छग निजी बस सडक कचुलिया छाका जुबले मोटिन च्याम सिग्दु बसे चिन च्याम मुनुत दुगु ख हिमाचल प्रदेश मदिक वाओले सचिव चे न्यागु सडक तिना तगुदु आतक प्रदेश सचिव पी सोम मुनु सी ढङ्कुगुदु थौ दे न्यङ्क छरिया फे या लिचोल वा वैगु धागुदु जल तथा मौसम पूर्वानुमान मासाका कथ छरिया मो चाप दुगु रेखा सरदर लाग्या दुगु धागुदु थौ सामान्य निसे मदिक वा वैगु तुकमा यागुदु बागमती कोशी गण्डकी कर्णाली ओ लुमिनी या पहाडी ओ हिमाली लाग्या आपल वा वैगु तुकमा यागुदु मिग ए नि खुगु सिबे अपो तानोगु दुदासा थौ न थथे जुइगु तुकमा यागुदु मिग नेगु फुटी खुगु मिलिमिटर वा वगु ख नेपाल भाषे बुख कोचाल सुभा

जु निनामी भाजुमे जुपि लसकुसदु युपा हगु नुगस ज्याजोले जोजलपा नदु ले निनामी भाजुमे जुपि छिन्छिएछु थो ज्याजो जना जिरु श्रेष्ठ वया जना गुजुल ले नापा थो ज्याजो या तानि हजा केता जिता प्राविधिक थौं ग्वाली ब्याजना दि गुदु प्राविधिक भाषा उत्तम पाण्डे जिउ न ले निनामी भाजुमे जुपि थो ज्याजो या तातु न पुङ केता तिब ब्याजना दि मछित अले रेडियो नेपाल तिथि ज्याजो निना चुना दि पि सकल निनामी भाजु मेजुपिन त नपा सकल नेपामी पिन त थौ अगस्त 9 तारिक खुनु या विश्व आदिवासी जनजाति दिवस लसता यकु यकु पिन्तुना नपा लस हना देशना सना अले छिसिएसु डिसेम्बर 1994 निसे थो दिवस हना वया चङ्गु दु अले थो दिवस यकु तातुना निसेक या यकु थुकियागु आज त दु गुकिया त पोङके गु नीति सकल दे ते स न आदिवासी तेगु महत्व आदिवासी तेगु ऐतिहासिकता आदिवासी तेगु थिति कथयागु नसा जोल अले उमिगु मसिका निसेक इमिगु फुकुङ सरकार नपा स्वापु दुगु अले फुकुङ फुकुङ विशेष एक सल जुया चङ्गु दु अले थुकिया त हे मकेगु नीति थुकिया त निहजाकेगु नीति अले थुमिताना छौ कथा मेपि सरह हे हक अधिकार बिगु नीति न एक ज्याज जुया चङ्गु दु उके ठाउँ कने थेक छुएको नेपाल कन्डिसन हेर्दा छ गुमापट्टि आदिवासी जनजाति ढल्किम भच लिने लागु खला सरकार चाहिँ इमित मेपि नेपाली वा मेपि जाति जात छ र चाहिँ उमिता चाहिँ हक अधिकार स्वतन्त्रता लला मफुगु खला धेगु विशेषण खत वया चङ्गु दु उके आदिवासी जनजाति यागु विशेषण छिके दुगु छुन जानकारी दुस अवश्य न पङ्का दिफु अले आदिवासी दिवस लसता छिसन छित मने बोलङ्गु ख पङ्का दिफु धासे थौ यागु थो ज्याजो न्योज्याके न्ह जि दक्ले नापा चिनेवातेगु राष्ट्रिय मेन देश अले थो नाप्रापा मेगु सल यता छिस न्योज्याकेगु जु अले नै भाजमे जु छिसिएसु थो ज्याजो आइतबापति कसो तेसिया जिता यी ज्या झिगु मिनेट नि चिन्छ त यी त कोइ अले थो ज्याजो यता छिस 98.103 मेगा हर्स नेपालीको चुना निना दिफु था छिस छि पासपी निसेका छि जहान परिवार नापा थिति छि मसु पि सुन दुसा वैक पिन्ता न नि ध्यागो नीति हलिनियङको चुना निङ्केको नीति थिति वेबसाइट न दु जे चाहिँ वेबसाइट मध्ये जे नाका माबले www.radionepal.gov.np वो www.radionepalonline अले रेडियो नेपाल यागु हे फेसबुक पेज पाखेन छिसँग अलि न्याङको चुना निना दिफु न्याङका दिफु अलि छिसँग जानकारी बिहा दिफु निनामी भाजु मेजुपी थुए इनापिया से आदकले नापा चिनेवातेको राष्ट्रिय मेने नै मेन आफ्ना पाँच चितलस कुसे या नयाँ चुने जहाँसम्म 42,711 हो 42,736 दासे आधा सा दक्ले नापा छिगु मे

0: यो निनामी भाजु मेजुपी दिपा महर्जन ना पापास पनि गु सले दुगु मे छिसन निनाय दिला यु कुए बाला गु लुका वागु मे ख थो मे नुगु जु शान्त बिना थो मे या त यकु मनु ते सँग एका चंगु दु ले थो मे जितन बाला अवश्य न छितन बाला ताल जिदे गा सबला सका से फोन सप्ति दिमा पासे त लस्कु सेना सना हजुर हेलो
1: हजुर जजलपा
0: हजुर जजलपा अले मफु
1: हजुर मफु जिल्लो इते
0: हजुर राजेन्द्र नकमी
1: हजुर
0: हजुर अहिले राजेन्द्र ज्यू छु दैदी विश्व आदिवासी दिवस
1: लसतामी सकल चाहिँ नि विश्व आदिवासी दिवस जनजातीय दिवस लसता सकिस्तान सुख शान्ति सम्बन्धी काम नयाँ सकिस्तान भिन्दु नदेश नाप हरिदिन नेपाल हलिसित सकिस्तान भिन्दु नागामी
0: सिक्कुको सुबादु लिपाय दिसान भोतिक आदिता इनाम
1: तु
0: नापान छु हजुर हजुर दिसा
1: दिन चाहिँ आदिवासी दिवस चाहिँ नि गुल्न थियो संस्कृति संस्कार थियो मौलिक हक अधिकार थियो निवार्य छ मेमे जाति पिन्छन ठुँ दिने के नै या माउदो मखला नेपाल डे भैँसीको लागि छ यो राष्ट्रिय त यो भावना चाहिँ नि गुल्न नसा जमाटो दही अहिले थियो पहिचान भैँसीका दही थो नेपाल भाषा पाख्या हो मेमे खस भाषा दिन मेमे जात जाति न भाषा दो ठौँ दिने सक्सान नोग्लेटे यो हने मा दिन जो कारण चाहिँ नि छ यो भावना चाहिँ ठो दोगे नेवा झी नेवाय दिए तर चाहिँ नि छ राष्ट्रिय त भावना चाहिँ नि यदि न्याउने खस चाहिँ नि झिसा नपान हे परम्परा हे यान्तौपट्टि विचारत चाहिँ झिसा झ्याकेमा यो संस्कृति सम्पदा न बताएमा एजिया थो मौलिक चाहिँ नि सम्पदा दोपट्टि लुइँटी पाखेन चाहिँ नि आयो सरकार चाहिँ नि वाच्याका चाहिँ ठन नपान हे चाहिँ लै चौँ ठासे आनन्द छ ल व्यक्त चाहिँ नि व्याकै पिन्त चाहिँ विचार ट्याक्दै झिँ इना चाहिँ नि हस्तुवा
0: राजेन्द्र नकमी लुहिटी पख्याले अवश्य न मनुते गु सोच विचार पासान्त बिन मनुते गु गुपट्टि आदिवासी जनजाति ते गु नापा निसिया गु मसिका सांस्कृतिक पहिचान निसिया कया उमी गु भाषा संस्कृति सम्पदा पुरा तत्त्व या त माके फतदा छ अवश्य न दे सेल नाई दै गु कथा एक्ल विचार तया दि गु अवश्य न ख मनुते स नै गु व स टिसा निसिया कया थिथि कथया गु हल जुल पाना हो नि भ्यान पाइजी तर पासाना तबी गुपट्टि थके दुगु मातृत्व निसेकया थ गु गुपट्टि मसिका ख पोदासा लिन आएछु नि उकि ठो ज्ञान पुसे चङ्गु कथा गुपट्टि ननिको खतरा न आ नेपाली दशा जुहा चङ्गु दुखने दया चङ्गु दु नेपाली जग मको अलिनियङ्कन जुहा चङ्गु दु तर गुलिसिन दासा माके गु कुत कया थिथि कथया गु ज्या छो या नाना चङ्गु दु उकि थुकिया त हपा बिगु नीति सरकार अवश्य न ग्वालियामा नत्र दासा अवश्य न तनाना भनि यो तनि मुखु दासा त पुरा तत्त्व निसेकया सम्पदा संस्कृति या त माके फत दासा उकि दुनिया भाषा संस्कृति या त माके फत दासा लेना जोनी नत्र दासा अवश्य न थु सेना हुने गु चिज कौ कि नना नहुने फु ठुकिया त जाने ध्याने तया झिसक्क सिन छप जुया थोख या त बिचाया नु दासा फोन शब्दी दिमा पासा त लस्कु सेना सना हजुर हेलो
2: हेलो जोजोलपा नमस्कार जोजोलपा
0: हजुर जोजोलपा जाजलस्कु स दु सुरविनाक पाखे ख
2: दिवस आफ्नो इना तपाईँ दाई कि तत् केविता एक एक सुधारा भ्याचना आखी नखतको लक्षका ओल बजार पा एकदम ठाउना छ न एकदम छिटो नि बजार पा एकदम ठाउना चाहन्छु आखी सर ज्यान मोला केवल एकदमै भा ठाउना चाहन्छु ग्यास मरु बिजुली मरु बिजुली मरेर नखट्ने मर्चेका त्यहाँ छिउ निन्दा एक एक सुधारा डुका त्यहाँ एकदमै के आतो झिटु नि विद्युत बिरुवा अहिले हेर्नु नि एकदमै आपते माउ ज्यादा छिटा गाडु चरेको छिटा फसी आतो झी बाख्रा आलु बाख्रा अनि बसी हरेक दुनियाँ हाँगा बाङ्गा नाङ्गसँगमा खिता अब खरम खरमुर वेट ल एजर चार बार वया चो डुली टुकिस लुमका चुना चुनु डु तर चाहिँ आ खिता मुसु केउ मगला हरेक चिज खिच आने मुसी वया चोन्डु कोनि वया चोन्डु लाउज वया चोन्डु मन्डेता मा टुटुनि दल उठुनि माग छिर माग आ मन्ड त वस्तै मया रुङ्ला तर्क तर्क ज्ञान नेमा रुङ्ला तर्क मिया निप्स छिर मिया निप्स आ ज्ञान ने गुली पाता किन सो सोय ना दिस आ ए ज्या छिन्वा त दुनि आ थे ज्या मन्डा वा पुलानै ना दिदे आ छलि मका मोले त छल चका त छि भूत पसया बात है क्या आ फूट बनते ना या माल का आ मंटे तो मोड मंटा आतो आ तब मंटा आ मंटे सब दुनी आ छाली छाली सुनी सु डुग जा जत्या नया सुनो खाती सा आ ग्यासे मार दूँगा आ तो मोरू का मंटे सब दुनी अब ऐसे मोरू ऐसे दुनी ठीक ना रुमंगा दिसा ठीक तो कटा सुबह जेमा बा
0: जो सुबह जयमा भाइ रतनलाल ज्यू अवश्य न ख वेकलाई धैदिएको थिएँ हे यो योपा वे धुङ्कला झिउ जीवनेन ध्याएको खचा मिघ नखा चखाबले सिन से कया थिति कथा यागु मिख जोरियाइगु भुया निसे कया थिति नखा चखा चलिआइगु ख अलि मिखे जोरियाबले साइड टटको ठलामा लाखे डेकिगु ख ठाउँ खाने उक्या उठा क्याटिङ निसे कया बाटो पालस डे ढुङ्कला दासा अलि मनु तेस नखा चखा या त उलि वास्ता यागु मधु देखा वैक्लान धैदि ल नखा चखाया त वास्तै है तर नखा चखाया त मागु थिति कथ यागु त जिल्लो जिए निसेकया स्वासिहले थिति कथ यागु नसा ज्वर त खेदासा उली ध्यान म बिगु नुनुको कथन जोरियाना नै चङ्गु जुल उके अवश्य न झिन्यवा तेसना झिन्यवा ते के दोगुगु पर कथन यागु थिति कथ यागु नसा ज्वल त दु नखा पत्तिक वो दासा नयाँ चङ्गु दु गु कथन पुङ्केको हिसाब अन्य वो गुपट्टि फर्मुला त डु फर्मुला दासा तापागु खला नुनु फर्मुला वो खला दैथिला चुया चङ्गु दु तर एसान तबि नखा चखा वै चङ्गु जुल अले चाहिँ नखा चखा नापान थिति जोरियाना ने मागु खके भए जोरियाना ने मागु खाके समय जोरियाना ने मागु इले चाहिँ ग्यास तासा अवश्य न मधु सरकार ग्यास वै चङ्गु धागु दु तर कृत्रिम अभाव धागु खला वा सरकार व्यवस्थापन या मफुगु धागु खला वा झि नेपामी तहे ज्या लगे मजुपी स्वार्थी कट्टुपी धागु खला छुद्यागु ख ग्यास तास अवश्य न मधु ग्यास मध्ये यो कोही हात्या जुया चङ्गु दु अहिले इले बिले लाइन वना छ नि अहिले सक्कसिन इन्डेक्सन भुटु निसेको या थिति कथे यहाँको भुटु यहाँ फोया चङ्गु कन्डिसन नम्बरु उकि यहाँ थिति कथा यहाँको हाटिया त झिसन नेनाचना गुदु गुली मन तेसन जिल्ला बिस्कुट नयाँ चना गुदु जिल्ला दालमटो बजी चाउचो नयाँ चना गुदु दैगु खन त्यादु उकि मनु त थो थुज्यागु छुट्यागु फास्ट फुड तेस मनु त बिरामी जुई लोगी जुई थो पर्खा अहिले उकिन थो खे अवश्य नै सरकार ध्यान तया मनु ते गु छे छे गुपट्टि सरकार चाहिँ आइडी कार्ड निसेको थिति छे छे ठेङ्केको धका दैदिला ग्यास यागु सिलिन्डर न छे छे ठेङ्केको नितेँ सरकार टिभी मा ध्यान टेमा अहिले सरकार जिपिन दु जनता त ग्या म जनता तेसन दुःख त्याके म दैगु छौ कथा अभिभावक या भाला जनता ते त महसुस याके फेमा दैगु तातुना दु जिउ न अहिले जिउ इनाप न जुलतु दासनिरामी भाजु मेजुपी अवश्य न ख थिति कथ यागु नख चखा नाप नापा थिति कथ यागु हाट्या न बोलाना चङ्गु दु थो हाट्या जेङ्के गु नीति दासा थौ यागु आदिवासी जनजाति दिवस पुङ्के फेमा जनजाति तेगु थिति कथे आगु संस्कार संस्कृति परम्परा तजिलो जिया त माका तेगु नीति न जनजाति निसे गया सरकार छप्पा जना जुया न्योज्या फेमा दैगु लसना देसा सेम फोन सप्त दिमा पासा त लस्कु स्यान चराज हेलो
3: हेलो जोजलपा
0: जोजलपा जाजु लस्कु सदु
3: सुभा देसना
0: हजुर अले बुद्ध सिकमी ज्यू
3: हजुर
0: हजुर छु दैदी बुद्ध ज्यू
3: आदि विश्व आदि भाषी जनजाति दिवस उपलक्ष्य रेडी नेपाल छिटले रेडी नेपाल परिवार नेपाल गुली आदि आदिवासी डु वेकअप इन्स वेकअप इन्ट ज्ञान बुद्धि दया न ठाउँ चाहिँ त्यसै ठट बासिन्दा ज्यान ठाउँमा लजगा सयान वो ज्यादा झेगे मफया तो उठू आ व्यापार व्यवसाय या सया न व्यापार व्यवसाय या ना तो ठा मरिया तो उठू अले वो लगानी या फया न वो लगानी या तो वो व्यापार व्यवसाय उठे टंड कल कारखाना खोले या टाइम है बिडोंग से बिडोंग से ज्याओ ना तो उठू थय चाहिए वो आदिवासी अध्यक्ष जुपिन्छ प्रशासन सचिव जुपिन्छ छिनेवा टेस ठगुवा छिए पसल कब डेक डेक न मेपिन्था पसल कब कया चाहिँ व्यापार व्यवसाय या माला चाहन्छु एजुन त्यो छिसँग सिका ठिका क्यामल कि ठगु छिए पसल कब डस ठगु परिवार न्यामेसँग छौ पसल चलाएन मेउ जनजाति त चाहिँ अहिले मेपिन्दा होइन मर्पिन्दा मेउ ठस तया अरेना तलजगा चलाइन गरा छ आदिवासी जनजाति त चाहिँ एक आपस मेलमिलाप ज्या ठाउन तलजगा दै ठाउँ परिवार चाहिँ मेपिन त खुसामत या जिम्मा लिएको व्यापार दिया छ अहिले कर्पनी छेक कर्पनी त बापुल त ठाकुई अहिले ठाउँ ठाउँ छेयो पसै बा मेपिन चौँ यही मेपिन त बा बिको क्याबलाई ओ घर कर घर कर फुलमाल अलिक कोठा बिउ चाहिँ ओ कर फुलमाल अलिक ठमाना फुलमाल अलिक मेमु पस टाउमा चाहिँ ऊ न व्यापार व्यवसाय ऊ चाहिँ ऊ कर न फुलमाल एज डबल डबल टेबल टेबल धुनी एज चाहिँ ठाउँ पस ठाउँमा चाहिँ टिका टाँस ठाउँ ठाउँ छेठवाना व्यापार व्यवसाय या टिका टाँस ठाउँ लगान ठहर त व्यापार व्यवसाय न ठाउँ ध्यान बढाए जुइ त अलिक कर न टु बचाएजु ल अलिक ठरिया टिका टाँस छिट व्यापार व्यवसाय या ना नै पि एक आपसे आदिवासी जनजाति त एक आपसे लजगानन्द त थपि ठाउँ त अपिदगा सलसाब्या भिन्दो नदेश नाच्न बुद्ध सिकमे पाखे सुबा जय महाभाय
0: ज्यू सुबह जय मा भ्या बुद्ध ज्यू लिपा दि सेनापति क्या दि त इन अब्दु अब सिन खब एक्ल धेदी थिए आ मनु ते सचाने छौ ढाकोसा बसाइ सराई छगु थासा मेगु थासे छगु थासा मेगु बा लागु वा अनसिबे त धङ्गु वा युको फेसिलिटी दुगु था त लियावना सङ्गु दु दु पिसा अले मद पिसा दासा आ छुयागु इमी केला सुन मेगु अचिन दैमकु टेवाना दैमकु लजगान दैमकु अले छो कथा थाको खसा छुइँ आफैको कन्डिसन नौ मधु तर गुलिन दुपी सन् चाहिँ थगुए थासे थगुए छेखे पस तसा बाला मेपिङके बा कया चाहिँ मसा जिउ ढका वेक्न सुझाउ बिहा दिगु दु तर मेगु थासे पस त ओनि पि गुलिसिया गुला थगु दयाए छ नि गुलिसिया गु मधुगु जुइफु तर गुलिसियागु हान मनु त हे मेमे गु थासेन वना चङ्गु जुइफो उके मन त्यसन थता छुयासा बाला छुयासा अफुई धका वो खकेन बिचाया याना चङ्गु जुइफो तर न्याउ न्याथे जुसाना यदि सुन मन त दासा थगु छेहे पसतया मेगु थासे पसते गु सिबे थगु थासे तसा बालाइ धका एक्लो सुझ बिहा दिल

0: 有越南人发生在这边，其实越南海底了马亚嘞，热那的一个，他一块六公花个面卡嘞，他弗兰个面能多得了，他面亚他在那牛，牛个可同还亚地个可，普吉尔尼巴里就那，嘞维克拉，提提面哈拉地个都，嘞维克格尔尼瓦就啥呢？维克拉哈尼瓦提他，尼瓦什么的亚个，巴萨宗斯克提亚他，马克古尼天维克拉古可他，古他亚那做那地个子了，乌克尼天维克亚他一块个苏维尼新拉索那的。सनातन आज वेक यागु सांगीतिक पला एको एको न्यजा फे मादैगु मनसुवा न देसरा जना दासे नेमी भाजु मे जबि आ दसा जिम फोन सप्ति दिमा पास्ता लसगु सेना सना हजुर हेलो
1: हेलो लपा
0: हजुर जोजो लपा म फुची
1: एकदम
0: हजुर जितना बाला नाय सना चंगु तु अले सन माया जिउ म अछि जिना भविष्य दुख
1: अथो
0: एकादशी जिउ व्रत व्रत चनादी हजुर अले जिउ व्रत छिसन सोची आगु थिति कथा यागु मन तुन फोने फेमा धैगु जिन लसना देसना सोरा अले शर्मा जिउ छु दै दिथौ विश्व आदिवासी दिवस लसता छुन थ्या मागु खन्दु वा सुवादक देसना दि
1: विवेद मया जनजाति भाइ मलाई
0: जो
1: आफ्नोहरूले चाहिँ थुप्रै म

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमै समाचार सुनल जाय। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा पार्टीक दिस सरकार में सहभागी भेल मंत्रीगण मास में कमती में एक बेर अनिवार्य रूप में केंद्रीय पार्टी कार्यालय में उपस्थित भाकर नागरिक आ पार्टी पंक्ति संग प्रत्यक्ष संवाद में अयबाक कार्यक्रम तय कलक है। लोकतंत्रक मर्म निर्वाचित नेतृत्व निरंतर नागरिकक निगरानी सुझाव आ संपर्क में रहबाक भेलाक कारणे जन उत्तरदायी पारदर्शी आ परिणाममुखी राजनीतिक संस्कारक विकास करबाक लेल रासपा अगला भादव सँ नागरिक नीति आ नेतृत्व कार्यक्रम शुरू करय लागल अछि। रासपाक सह महामंत्री असीम शाह आइ विज्ञप्ति मार्फत जारी कऽ निचा रहल आवाज के सीधा राज्यक नीति निर्माण आ कार्यान्वयन के तह धरि जोड़बाक लेल पूरक काज करबाक लेल ई कार्यक्रम संचालन करय लागल जानकारी देलन अछि। कार्यक्रमक पहिल चरण में साँझ एक घंटाक अवधि पूर्ण रूप में आम नागरिक लेल खुला रहबाक आ एहिठाम उपस्थित मंत्री सँ सीधा सर्वसाधारण जनताक शिकायत समस्या अपेक्षा सुझाव सब सुनबाक ओ समय छुटियाओल गेल अछि। दोसर चरण में मंत्री पार्टी केंद्रीय समिति सदस्य आ प्रतिनिधि सभा सदस्य बीच संयुक्त बैठक बैसका पहिल चरण में नागरिक से प्राप्त सुझाव के आधार पर देशक समसामयिक बहुआयामिक आ नीतिगत नागरिक सरकार मंत्री व्यवस्थापिका सांसद आ संगठन केंद्रीय समिति बीचक समन्वय के चुस्त बनबैत नागरिकक मुद्दा के प्रभावकारी ढंग से संबोधन करबाक संबंध में साझा रणनीति तय करबाक लेल ई कार्यक्रम तय कयल गेल विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। एहिना मंत्री सबके आम नागरिक प्रति प्रत्यक्ष रूप में जवाबदेही बनेबाक नागरिकक वास्तविक समस्या बुझि कऽ राष्ट्रीय नीति तथा कानून निर्माण में पार्टीक धारणा तय करबाक नागरिक पार्टीक सांगठनिक तह संसदीय दल आ सरकार रहल प्रतिनिधि बीच प्रभावकारी सूचना आ कार्ययोजनाक आदान प्रदान करबाक लक्ष्य ई पार्टी लेलक अछि। नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ पिछला समय गैस के आयात लगातार वृद्धि बढ़ला कारणे अनावश्यक सिलेंडर संचय होल्ड नहीं करबाक लेल उपभोक्ता में आग्रह कयलक अछि। भारत से सहजे एलपी गैसक आयात हेबाक संगे उद्योग से सिलेंडर रिफिलिंग भरबाक काज का निरंतर बाजारीकरण भ रहला कारणे आवश्यकता से अधिक गैस खरीद नहि करबाक लेल संघ सब में आग्रह कयलक अछि। अगला दिन में सेहो गैस आपूर्ति में समस्या नहि हेबाक कारणे गैसक अभाव देखल गेल संभावना नहि अछि। संघक अध्यक्ष दीवान बहादुर चंद आइ जारी कयल विज्ञप्ति में उल्लेख कयलनि अछि। नेपाल आयल निगम के पहल में भारत के विभिन्न शोधनशाला रिफाइनरी से सहज रूप में हाल एलपी गैसक आयात करीब 15% से वृद्धि भ रहल अछि। पिछला 22 दिन में 39,774 मैट्रिक टन गैस आयात भेल निगम जनौलक अछि। एहि आधार में चालू आर्थिक वर्षक साउन में लगभग 55,000 मैट्रिक टन गैस आयात होबाक अनुमान कयल गेल अछि। गत आर्थिक वर्षक ओही अवधि में 44,318 मैट्रिक टन गैस आयात भेल छल। उपभोक्ता के बाजारक मांग अनुसार गैस उपलब्ध करेबाक लेल हर संभव प्रयास कर रहल जनबैत गैस उद्योग संघ घरायसी प्रयोगकर्ता उपभोक्ता के प्राथमिकता में राखि गैस बिक्री वितरण करबाक लेल सेहो विक्रेता सँ आग्रह कयलक अछि। हुलाकी सड़क अंतर्गत जनकपुर भिट्ठा मोड़ जोड़ वाला सड़क में पड़े वाला महतरीक महतरी गांव पालिका वार्ड नंबर 1 परसा स्थित निर्माणाधीन कुटमेश्वरी पुल अधिक समय से ओहिना रहलाक कारणे स्थानीय तथा यात्री सब शास्तिपूर्ण रूप में यात्रा करबाक लेल बाध्य बनल अछि। भारत संघक व्यापार धार्मिक पर्यटन तथा स्थानीय आवागमन के सहज बनेबाक उद्देश्य से निर्माण कयल गेल ई हुलाकी सड़क के अधिकांश खंड पूर्णता पाबि चुकल अछि, मुदा बिगही नदी के पुल निर्माण में देरी भेला सँ स्थानीय वासी विद्यार्थी किसान यात्री सब दैनिक रूप में जोखिमपूर्ण यात्रा करबाक लेल बाध्य बनल अछि। सवारी साधन के अत्यधिक चापक कारण दैनिक रूप में घंटों धरि जाम हेबाक वैकल्पिक बाट के लेल बनाओल गेल डायवर्सन बरखा के समय में दहला सँ बाट आओर जोखिमपूर्ण बनत गेल अछि। कतेको अवस्था में यात्रीगण लंबा दूरी घूमि कऽ गंतव्य में पहुँचबाक बाधता अछि। एम्बुलेंस विद्यालयक सवारी साधन अत्यावश्यक सेवा सेहो प्रभावित होइत गेल स्थानीय संजीव कुमार मिश्र बतौलनि। स्थानीय बेर बेर संबंधित निकाय आ निर्माण कंपनीक ध्यानाकर्षण करौलाक बावजूदो काज अपेक्षित गति नहि लऽ सकल। सड़क संचालन में
अयलाक बाद पुल सेहो जल्दी तैयार होबाक अपेक्षा कयल गेलाक बावजूदो निर्माण गति नहि लऽ सकला पर नागरिक में निराशा बढ़ल अछि। ई पुल निर्माणक लेल विक्रम संवत 2079 साल फागुन में राम जानकी निर्माण सेवा जनकपुर धाम 20 करोड़ टका में समझौता कयने छल। बांकेक राप्ती सोनारी गाँवपालिका वार्ड नंबर 9 के बासिंदा के हरेक वर्ष शास्ती दैत आयल भक्त खोला के नया निकास देलाक बाद डुबानक त्रास हटल अछि। ढकेरी बाजार व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष विश्वराज खनाल कहलनि दशकों से स्थानीय के शास्ती दैत आयल भक्त खोला के अंत इंजीनियरिंग मजबूत स्थानीय इच्छा शक्ति के बल पर बस्ती से अधिक दूर जंगल क्षेत्र में थुनिक नया निकास दिलाक बाद डुबान के त्रास हटल अछि। विगत के वर्ष में गाम में पैसका उपद्रव मचाव वाला बाढ़ के गाम नहीं पैसा देबाक लेल जंगल के क्षेत्र में तटबंध बनाकर मोड़ल गेल राप्ती सोनारी गांव पालिका वार्ड नंबर 9 के वार्डाध्यक्ष सोहनलाल थारू बतौलनि। सामुदायिक वन दिवस 2083 के अवसर पर डिवीजन वन कार्यालय रोहथट चंदीगापुरक आयोजन तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिला महासंघ रोहथटक सह आयोजन में चंद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहक परिसर में आयोजित वृक्षारोपण तथा सम्मान कार्यक्रम में सहभागी सब सामुदायिक वनक संरक्षण स्थायी व्यवस्थापन आ हरित अर्थतंत्र प्रवर्धन के लिए युवा सहभागिता बढ़ाओल जेबाक बात पर सरोकार वाला सब जोर दिलक अछि। कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल मधेश प्रदेशक अध्यक्ष सोम शर्मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वन संरक्षण आ प्रवर्धन में उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह करैत आयल बतौलनि आपके सामुदायिक वन युवा सहभागिता हरित अर्थतंत्र आ स्थायी व्यवस्थापन नाराक संग आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातिक गाछ रोपल गेल छल। कार्यक्रम में वन संरक्षण वृक्षारोपण जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक वनक स्थायी व्यवस्थापन के विषय में चर्चा कयल गेल छल। ओहि अवसर पर वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन में योगदान पहुँचबाक आ पहुँचावला 5 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के नगद सहित सम्मान कयल गेल छल। स्थायी वन व्यवस्थापन में योगदान पहुँचाओल गेल बापत हाथोमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह डरेलो नियंत्रण में योगदान पहुँचाओल बापत नवदुर्गा उपभोक्ता वन समूह वृक्षारोपण मार्फत हरियाली प्रवर्धन में योगदान पहुँचाओल गेल बापत नमस्ते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चूड़े क्षेत्र वन संरक्षण में योगदान पहुँचाओल गेल बापत प्रगतिशील महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आ जैविक विविधता संरक्षण में योगदान पहुँचाओल गेल बापत लाल भित्ते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के जनहि 5,000 तथा कदर पत्र सहित सम्मान कयल गेल छल। डिवीजन वन कार्यालय चंदनिगापुरक डिवीजनल वन अधिकृत मनोज ठाकुर के सभापतित्व में ई कार्यक्रम सम्पन्न भेल छल। डिवीजन वन कार्यालय 12 आर्थिक वर्ष 2081-82 में उत्पादन कयल विभिन्न प्रजातिक 5,000 गाछ पड़ोसी रहल जिला रौतहट आ परसा में निःशुल्क पठौलक अछि। सड़क किनार सार्वजनिक तथा निजी जमीन में वृक्षारोपण करबाक उद्देश्य सँ ई गाछ उपलब्ध कराओल गेल अछि। डिवीजन वन कार्यालय 12 अनुसार रौतहटक परोहा नगर पालिका लेल 2,000 आ परसाक जगन्नाथपुर गाँव पालिकाक लेल 3,000 गाछ पठाओल। डिवीजन वन कार्यालय 12 डिवीजनल वन अधिकृत सुजीत कुमार झा जानकारी देलनि। संबंधित स्थानीय तहक मांग के आधार पर गाछ उपलब्ध कराओल गेल कार्यालय जनौलक अछि। 12 निजगर नगरपालिका आ रातो बंगला स्कूल ललितपुर बीच सार्थक बाल शिकायत कार्यक्रम संचालन के लिए समझौता भेल अछि। प्रारंभिक बाल शिक्षा गुणस्तर सुधार करबाक उद्देश्य सँ कार्यक्रम संचालन करबाक लेल दुनू पक्ष समझौता कयलक अछि। समझदारी पत्र में निजगर नगरपालिकाक दिशा नगर प्रमुख सूरतपुरी आ रातो बंगला स्कूलक दिशा डायरेक्टर मिलन दीक्षित हस्ताक्षर कयने छलथि। स्थानीय बाजार में आई सुन चांदीक मूल्य वृद्धि भेल अछि। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघक अनुसार छापावाल सुन के मूल्य आय प्रति तोला 4,800 वृद्धि भ 3,01,700 कायम भेल अछि। बीतल शुक्र दिन 1 सुन के 2,96,000 में कारोबार भेल छल। एहिना चांदीक मूल्य प्रति तोला 6,500 बढ़िकर 4,645 पहुँचल अछि। शुक्र दिन 1 चांदी आज 4,580 में किनबेच भेल छल। प्रति तोला 4,570 में कारोबार भेल छल। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सबके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आय सुनक मूल्य प्रति औंस 4,343 आ चांदीक मूल्य प्रति औंस 63 अमेरिकी डॉलर कायम रहल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर देश में विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। आदिवासियों की विशिष्ट पहचान और संस्कृति ही नेपाल का राष्ट्रीय गौरव है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल का कथन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आगामी भाद्र से शुरू करने जा रही है नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम। गैस की कालाबाजारी नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बाजार अनुगमन तेज, आयात बढ़ता जा रहा है, इसलिए अनावश्यक भंडारण न करने का नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ का आग्रह। और ईरान ने अमेरिका के सामने रखी 6 शर्तें, हॉर्मुज को लेकर कड़े रुख का संकेत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में 32वां विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया है। दिवस के अवसर पर आदिवासी जनजाति आयोग द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा कि देश के संविधान ने विविधता में एकता को आत्मसात करते हुए सभी समुदायों के अधिकार और हित सुनिश्चित किए हैं। राष्ट्रपति पोडेल ने उल्लेख किया कि प्राचीन काल से निवास करते आ रहे आदिवासी जनजातियों की विशिष्ट पहचान और संस्कृति ही नेपाल का राष्ट्रीय गौरव है। राष्ट्रपति पोडेल ने कहा कि राज्य के नीति निर्माण और निर्णायक स्तर पर आदिवासी जनजातियों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल के आंकड़ों के अनुसार स्थानीय स्तर पर आदिवासी जनजातियों का प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूप में 36.8% है। इसी तरह नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालय द्वारा आज काठमांडू के टोड़ी खेल में आयोजित मूल समारोह में उपराष्ट्रपति राम साहब प्रसाद यादव ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी मौलिक भाषा, संस्कृति और पहचान का संरक्षण करते हुए शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक प्रयोग के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पार्टी की ओर से सरकार में शामिल मंत्रियों को महीने में कम से कम एक बार केंद्रीय पार्टी कार्यालय में उपस्थित होकर नागरिकों और पार्टी पंक्ति के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने का कार्यक्रम तय किया है। रासोपा आगामी भाद्र से नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पार्टी के सह महामंत्री असीम शाह ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की आवाज को सीधे राज्य के नीति निर्माण और क्रियान्वयन के स्तर तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के पहले चरण में 1 घंटे तक आम नागरिकों के लिए खुला संवाद होगा, जिसमें मंत्री जनता की शिकायतें, समस्याएं, अपेक्षाएं और सुझाव सुनेंगे। दूसरे चरण में मंत्री, केंद्रीय समिति के सदस्य और सांसदों की संयुक्त बैठक होगी। बैठक में नागरिकों से मिले सुझावों के आधार पर समसामयिक और नीतिगत मुद्दों पर साझा रणनीति तय की जाएगी। पार्टी ने कार्यक्रम के माध्यम से मंत्रियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने तथा नागरिक पार्टी संसदीय दल और सरकार के बीच प्रभावी समन्वय और सूचना आदान प्रदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा है कि सरकार को जिम्मेदार बनाने के लिए कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आज से शुरू हुए केंद्रीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सभापति थापा ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण सरकार से सवाल करना उनकी जिम्मेदारी है। सभापति थापा ने 15वें महाधिवेशन को निष्पक्ष बनाने के लिए अग्रजों का सम्मान और सभी पक्षों को समेटकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पार्टी द्वारा आयोजित विशेष महाधिवेशन पूरी तरह विधानसम्मत, आवश्यक और औचित्यपूर्ण होने का दावा करते हुए सभापति थापा ने कहा कि महाधिवेशन की प्रक्रिया और परिणाम को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा असहमति व्यक्त किए जाने का विषय फिर से अदालत में पहुंच गया है। बैठक में सभापति थापा ने समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव और केंद्रित विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी, जबकि महामंत्री प्रदीप पोडेल ने चर्चा के लिए विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक कल दोपहर 1 बजे फिर से होगी। खाना पकाने वाली गैस की कालाबाजारी रोकने और आपूर्ति को सहज बनाने के लिए गृह मंत्रालय और उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के समन्वय में बाजार अनुगमन तेज किया गया है। भारत से गैस आयात में कोई समस्या न होने के बावजूद बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर कालाबाजारी किए जाने की लगातार शिकायतें मिलने के बाद अनुगमन कड़ा किया गया है। उद्योग मंत्रालय के सहसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदी के अनुसार बाजार अनुगमन को निरंतर और प्रभावी बनाया गया है तथा गैस की आपूर्ति में धीरे धीरे सुधार आने लगा है। कृत्रिम कमी दिखाकर उपभोक्ताओं को परेशान करने और महंगे दाम पर गैस बेचने की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उद्योग मंत्री गौरी कुमारी यादव ने गृह मंत्री सुधन गुरुंग से काठमांडू घाटी के डिपो में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का आग्रह किया था। मंत्री यादव के आग्रह के बाद गृह मंत्री गुरुंग ने पुलिस प्रशासन को आवश्यक समन्वय और सहयोग के लिए निर्देश दिया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। हुलाकी सड़क अंतर्गत जनकपुर भिट्ठा मोड़ को जोड़ने वाली सड़क पर मोहतरी की मोहतरी गांव पालिका एक परसा में निर्माणाधीन कुटमेश्वरी पुल लंबे समय से अधूरा पड़ा है। इसके कारण स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानियों के साथ यात्रा करनी पड़ रही है। सड़क का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन पुल लंबे समय से अधूरा रहने के कारण स्थानीय निवासी, विद्यार्थी, किसान और यात्रियों को रोजाना कठिनाइयों के साथ जोखिमपूर्ण यात्रा करनी पड़ रही है। रेडियो नेपाल के पूर्व समाचार वाचक महेंद्र राय माची का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पिछले 5 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे राय माझी का आज सुबह 7 बजे अपने ही निवास पर हृदयघात के कारण निधन हुआ। उनके परिवार ने ये जानकारी दी। विक्रम संवत 2076 साल में सेवानिवृत्त हुए राय माझी अंग्रेजी समाचार संपादक एवं वाचक के रूप में कार्यरत थे। वे संगीत क्षेत्र में भी सक्रिय थे। उनके निधन पर रेडियो नेपाल ने दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बगर जोलगादर के अनुसार, जब तक अमेरिका ईरान की मांगे पूरी नहीं करता, तब तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। बीबीसी के मुताबिक ईरान ने प्रतिबंधों में ढील, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई, ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी हटाने, ईरान के खिलाफ धमकियां रोकने और जब्त ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने जैसी मांगें रखी हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने कहा है कि हॉर्मुज से जहाजों के आवागमन को लेकर ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौता होने का मतलब जलडमरू मध्य का तुरंत खुलना नहीं है। इस बीच एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ईरान और ओमान के बीच बातचीत में प्रगति हुई है और जल्द ही वाणिज्यिक जहाजों के निर्बाध आवागमन को लेकर समझौता होने की उम्मीद है। पश्चिमी कनाडा के एक दूरदराज इलाके में तेजी से फैल रही जंगल की आग का दायरा दोगुना हो गया है। आग के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। बीसी वाइल्ड फायर सर्विस के अनुसार बाल्ड रेंज की आग ब्रिटिश कोलंबिया के समरलैंड और ओकानागन सिमिलकामिन जिलों में 95 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गई है। ओकानागन सिमिलकामिन के आपातकालीन सेवा अधिकारी एरिक थॉम्सन ने कहा है कि आग की दृष्टि से संवेदनशील इस इलाके में उन्होंने इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर आग फैलते पहले नहीं देखी। समरलैंड में लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार शनिवार सुबह तक पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। आसपास के ओकानागन पीचलैंड और ओकानागन सिमिलकामिन जिलों के कुछ इलाकों में भी लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। अन्य इलाकों में लोगों को संभावित निकासी के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 15 सूत्रीय शांति योजना को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह और वास्तविक रूप से हथियार नहीं डालता, तब तक इसराइली सेना गजा से पीछे नहीं हटेगी। आज को कैबिनेट बैठक में उन्होंने कहा कि इसराइल 15 सूत्रीय दस्तावेज को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ किसी भी खतरे को रोकता रहेगा। नेतन्याहू के अनुसार इस मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है और अमेरिका के कुछ प्रस्ताव इसराइल को स्वीकार्य हैं, जबकि कुछ पर वे सहमत नहीं हैं। ट्रम्प की शांति योजना में हमास का निरस्त्रीकरण, इसराइली सेना की वापसी और गजा के पुनर्निर्माण की योजना शामिल है। नेतन्याहू के रुख से योजना को एक और झटका लगा है। इसराइल के दक्षिणपंथी सहयोगियों ने भी योजना का विरोध किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर देश में विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। आदिवासियों की विशिष्ट पहचान और संस्कृति ही नेपाल का राष्ट्रीय गौरव है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आगामी भाद्र से शुरू करने जा रही है नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम। गैस की कालाबाजारी नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बाजार अनुगमन तेज और ईरान ने अमेरिका के सामने रखी 6 शर्तें, हॉर्मुज को लेकर कड़े रुख का संकेत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: फोर्जी LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: मनोरञ्जन र विविध जानकारी सँगै यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला।
6: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट सिलसिला
5: सिलसिला।
6: रेडियो पत्रिका सिलसिलामा प्राविधिक मित्र पराग पोखरेल सहित साथी मनुका कुमार अनि म हरिगिरीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। रेडियो पत्रिका सिलसिला हरेक आइतबार बिहान 11 बजेको समाचार पछि र यसका साथै आइतबारै राति 10 बजेको हिन्दी भाषाको समाचार पछि पुनः प्रसारणमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट साप्ताहिक रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न सेगमेन्टहरू रेडियो पत्रिका सिलसिलामा हुनेछन्। अझ भनौ, खोजमूलक सामग्रीको आधारमा यो कार्यक्रमलाई हामीले तयार पारेका हुन्छौँ।
5: कार्यक्रममा हामीले मनोरञ्जनका लागि गीत, विज्ञान उपयोगी सामग्री, स्वास्थ्य चर्चा, सामान्य ज्ञानका जानकारी, प्रेरक एवं रोचक प्रसङ्ग लिएर आउने गर्दछौँ। कार्यक्रममा समावेश हुने सामग्री विभिन्न सञ्चार माध्यम, अनलाइन समाचार एजेन्सी र न्यू मिडियाबाट साभार स्रोत हुनेछन्।
6: त्यसैले यो कार्यक्रमलाई पूरा समय सुन्नका लागि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ।
5: रोचक र ज्ञानवर्धक सामग्रीको संगालो, यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला।
6: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालमा सिलसिला
5: सिलसिला।
6: अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ। अब तपाईँहरूमा आज राख्दैछौँ विभिन्न विज्ञान उपयोगी प्रसङ्गहरू। विज्ञान उपयोगी प्रसङ्ग राख्ने क्रममा एन्ड्रोइड मोबाइल के हो र यसमा के कस्ता सुविधा उपलब्ध हुन्छन्, यो बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। एन्ड्रोइड मोबाइल भनेको गुगलद्वारा विकसित गरिएको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा चल्ने स्मार्टफोन हो। सजिलो भाषामा बुझ्नु पर्दा, जसरी हाम्रो शरीरलाई चलाउन दिमागको आवश्यकता पर्दछ, त्यसै गरी मोबाइलको हार्डवेयर, स्क्रिन, क्यामेरा, प्रोसेसरलाई चलाउने काम एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने गर्दछ। संसारमा सबैभन्दा धेरै र प्रयोग गरिने मोबाइल सफ्टवेयर यही नै हो। संसारका विभिन्न चर्चित मोबाइल कम्पनीहरू जस्तै सामसुङ, साइमी, रियलमी, भिभो, त्यस्तै वान प्लस आदिले आफ्ना फोनहरूमा एन्ड्रोइड सिस्टम नै प्रयोग गर्ने गरेका छन्। एन्ड्रोइड मोबाइलमा फेसबुक, टिकटक, युट्युब, ब्याङ्किङ एप्स वा गेमहरू डाउनलोड गर्नका लागि प्ले स्टोर हुन्छ, जहाँ लाखौँ एपहरू उपलब्ध छन्। यो सफ्टवेयर खुल्ला भएकोले मोबाइल निर्माता कम्पनीहरूले यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार परिवर्तन गरेर फोनमा राख्न सक्दछन्। त्यसैले सामसुङ र साइमीको फोन चलाउँदा भित्रको डिजाइन अलिक फरक देखिन्छ। एन्ड्रोइड फोनलाई प्रयोगकर्ताले आफ्नो रुचि अनुसार सजिलै सजाउन पनि सक्दछन्। यसको वालपेपर, त्यस्तै फन्ट, थिम र विजेटहरू सजिलै परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ। एन्ड्रोइड मोबाइलहरू सस्तो बजेटदेखि लिएर अत्यन्तै महँगा रेन्जसम्म उपलब्ध छन्। बजारमा पाइने फोल्ड हुने फोनदेखि ठुला क्यामेरा भएका फोनहरूमा एन्ड्रोइड सिस्टम नै रहेको हुन्छ। गुगलले हरेक वर्ष एन्ड्रोइडको नयाँ र अझ सुरक्षित संस्करण बजारमा ल्याउने कार्य गर्दछ। पहिले यसको नाम मिठाईको नामबाट, जस्तै एन्ड्रोइड किटक्याट, ललिपप, ओरियो, पाई राखिन्थ्यो भने अहिले एन्ड्रोइड 11, 12, 13, 14 हुँदै एन्ड्रोइड 16 संस्करणहरू पनि आइसकेका छन्। बजारमा मुख्य गरी दुई प्रकारका स्मार्ट फोनहरू रहेका छन्। एउटा एप्पल कम्पनीको आइफोन, जसमा आइओएस सफ्टवेयर हुन्छ भने अर्को एप्पल बाहेकका अन्य लगभग सबै कम्पनीका फोनहरू, जसलाई हामी एन्ड्रोइड मोबाइल भन्ने गर्दछौँ। अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ।
5: को हुन् रबर्ट कक? अबको लागि यो प्रसङ्ग 11 डिसेम्बर 1843 जर्मनको कलान स्थलमा जन्मिएका रबर्ट ककले रोगी भेडा बाख्राको रगतबाट मुसामा गरिएको अनुसन्धानबाट सरुवा रोग पत्ता लगाएका थिए। सन् 1876 एन्थ्राक्स किटाणुहरू अजम्बरी हुन्छन्, तिनीहरू सजिलै सर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेका थिए। सन् 1878 ससाना जीवाणुहरूले घाउ खटिरालाई खराब गर्दछन् भन्ने प्रमाणित गरिदिए। उनले टिबी रोग, ट्युबरकुल किटाणुहरूबाट पैदा हुन्छ भनेर पत्ता लगाए। सन् 1896 अफ्रिकामा फैलिएको प्लेग रोगबाट बच्ने उपाय तथा सुई पत्ता लगाए। सन् 1905 उनले शरीर क्रिया विज्ञान र चिकित्सा शास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे। उनको मृत्यु 27 मे 1910 मुटु रोगले भएको थियो।
6: विज्ञान उपयोगी प्रसङ्ग राख्ने क्रममा यो सामग्री राख्दैछौ। पायरोजन भनेको के हो त? जति दुधमा ल्याक्टोजनको मात्रा बढी हुन्छ, त्यति नै मात्रा पायरोजन पनि हुन्छ। पायरोजनले पानीलाई स्वादिलो पार्दछ। जस्तो कि पानीमा एक किसिमको रासायनिक पदार्थ हुन्छ, त्यस पानीमा पायरोजन उड्ने वा नष्ट हुने भएकोले त्यसैले तताएको पानी खाँदा हामीलाई कम स्वादको अनुभव भएको हो। पानी तताउँदा पायरोजनको तत्त्व उडेर जान्छ र पानी नतताइकन पियौँ भने पायरोजनको तत्त्व रहिरहन्छ, जसले गर्दा हामीलाई पानी मिठो लाग्दछ। अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ।
5: सबैभन्दा छिटो गति भएको जनावर कुन हो? कार्यक्रममा अबको लागि यो प्रसङ्ग। मानिस प्राणीहरूमा सबैभन्दा बुद्धिमानी भए तापनि सबैभन्दा छिटो गति भएको भन्ने भन्न सकिँदैन। सुँगुरले 1 घन्टामा करिब 11 माइल दौडन सक्छ, कुकुरले 36 माइल र घोडाले 1 घन्टामा 40 माइलसम्म दौडिन सक्छ। तर 40 माइल प्रति घन्टा दौडिने घोडा सबैभन्दा छिटो गति भएको प्राणी भने होइन। जङ्गली हरिणले 1 घन्टामा 50 माइल दौडन सक्ने पाइएको छ। जमिनमा पाइने जनावरहरू मध्ये चितुवा नै सबैभन्दा छिटो गतिमा दौडने प्राणीको रूपमा चिनिन्छ। चितुवाले 1 घन्टामा 70 माइलको यात्रा गर्न सक्छ। यो भन्दा छिटो गति त कुनै कुनै चराहरूको मात्र भएको पाइन्छ। जस्तो कि चरा प्रजातिको गिद्धको गति 1 घन्टामा 89 माइल उड्न सक्छ र चिलको गति 120 माइल प्रति घन्टाको हुन्छ।
6: विज्ञान उपयोगी प्रसङ्ग राख्ने क्रममा अब यहाँहरू माझ राख्दैछौँ रगत कसरी बन्छ र कति प्रकारका हुन्छन् रगत, यो बारेमा जानकारी दिँदैछौ। हाम्रो शरीरलाई जीवित र स्वस्थ राख्न रगतले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। रगतले शरीरका अङ्गहरूमा अक्सिजन, पोषक तत्व र हर्मोनहरू पुर्याउने र विकार वस्तुहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ। रगत कसरी बन्छ, यो कति प्रकारको हुन्छ भन्ने विस्तृत जानकारी तपाईँहरूलाई थाहा नभएको हुन सक्दछ। अब यो सामग्रीबाट पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा लाग्नेछ। आखिर रगत कसरी बन्छ त? वयस्क मानिसको शरीरमा रगत मुख्य रूपमा हड्डीको भित्री भागमा हुने बोनमारो वा हड्डीको मासुमा बन्छ। विशेष गरी मेरुदण्ड, छातीको हड्डी र कम्मरको ठुला हड्डीहरूमा रगत उत्पादन हुने तत्व हुन्छ। बोनम्यारोमा विशेष प्रकारका स्टेम सेल्स रहेका हुन्छन्। यी कोशिकाहरूमा शरीरको आवश्यकता अनुसार रातो रक्त कोशिका, सेतो रक्त कोशिका वा प्लेटलेट्समा परिवर्तन हुन सक्ने अद्भुत क्षमता रहेको हुन्छ। जब शरीरमा अक्सिजन वा रगतको कमी हुन्छ, तब मृगौलाले एरिथ्रोपोएटिन नामक हर्मोन निकाल्दछ। यो हर्मोन ले बोन म्यारोलाई छिटो रगत बनाउन संकेत दिन्छ। रगत बन्नका लागि हामीले खाने खानाबाट आइरन, भिटामिन B12, त्यस्तै फोलिक एसिड जस्ता पोषक तत्वहरू आवश्यक पर्दछन्। यिनकै मध्यले रगतमा हेमोग्लोबिन बन्दछ। आखिर रगतका कम्पोनेन्टहरू के हुन् त? हामीले देख्दा रगतमा एउटै रातो तरल पदार्थ देखिए पनि रगतमा मुख्य रूपमा 4 तत्वहरू रहेका हुन्छन्। एउटा हो प्लाज्मा, यो रगतको तरल भाग हो जुन हल्का पहेँलो रङको हुन्छ। रगतमा यसको मात्रा करिब 55% रहेको हुन्छ। यसमा 90% पानी र बाँकी भागमा प्रोटिन, पोषक तत्व र हर्मोनहरू रहेका हुन्छन्। अर्को हो रातो रक्त कोशिका, जसलाई हामी आरबीसी रेड ब्लड सेल अर्थात् आरबीसी भन्ने गर्दछौँ। यसले फोक्सोबाट अक्सिजन लिएर शरीरका सबै भागमा पुर्याउँछ। यसमा हेमोग्लोबिन नामक प्रोटिन हुन्छ, जसका कारण रगतको रङ रातो देखिन्छ। यसैमा अर्को रहेको छ सेतो रक्त कोशिका, जसलाई हामी व्हाइट ब्लड सेल्स अर्थात् डब्लुबीसी भन्ने गर्दछौँ। यो हाम्रो शरीरको सेना हो। यसले बाहिरबाट आउने भाइरस, ब्याक्टेरिया र रोगहरूसँग लडेर शरीरलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्दछ। रगतमा रहेको अर्को तत्व हो प्लेटलेट्स। हामीलाई कतै चोटपटक लागेर रगत बग्न थाल्यो भने रगत जमाउने र बग्नका लागि रोक्ने काम यसैले गर्दछ। यही सन्दर्भमा आखिर रगत कति प्रकारका हुन्छन् यो बारे पनि हामी जानकारी दिँदैछौँ। मानिसको रगतमा पाइने एन्टिजेन र एन्टिबडीको आधारमा रगतलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरिएको छ, जसलाई ब्लड ग्रुप भन्ने गरिन्छ। मुख्य रूपमा रगतलाई 4 प्रकारमा बाँडिएको छ र तिनीहरूलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ गरी 8 समूहमा बाँडिएको छ। जस्तो कि ग्रुप ए, यसमा ए पोजिटिभ र ए नेगेटिभ रहेको हुन्छ भने ग्रुप बी मा बी पोजिटिभ र बी नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो एबी पोजिटिभ र एबी नेगेटिभ, र अर्को चाहिँ हो ओ पोजिटिभ र ओ नेगेटिभ।
5: कार्यक्रम सिलसिलामा अबको लागि भने अर्को प्रसंग राख्दैछौ हामी। हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार हुन्छ भनी कसरी प्रमाणित भएको थियो त? प्राचीन कालमा नै मानिसहरूले मुटु एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनेर बुझिसकेका थिए, तर प्राचीन मानिसहरूलाई यसले गर्ने कार्यको भने पत्तो थिएन। मुटु एउटा रक्त पम्प गर्ने र शरीरभरि रक्त सञ्चार गराउने महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्ने कुरा पत्ता लागेको निकै शताब्दी भएको छ। यो कुरा पत्ता विलियम हर्वे भन्ने बेलायती वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका थिए। उनी एक मेहनती विद्यार्थी थिए र उनको एउटा प्रोजेक्ट शिकारमा घाइते भएका जनावरहरूको परीक्षण गर्नु थियो। धेरै अनुसन्धानबाट उनले देखे कि मुटुबाट धेरै मात्रामा रगत बग्ने गर्छ। उनले याद गरे कि यसरी बग्ने रगत शरीरमा रहेको सम्पूर्ण रगतको मात्रा भन्दा बढी छ। त्यसैले उनले थाहा पाए कि रगत शरीरभरि परिक्रमा गर्छ। वैज्ञानिक हार्वीको पालामा माइक्रोस्कोप थिएन, त्यसैले उनले यो तथ्य राम्ररी प्रमाणित गर्न सकेनन्। उनको मृत्युको 10 वर्षपछि मात्र एक वैज्ञानिकले माइक्रोस्कोपको सहायताले रक्त नलीहरूको सञ्चार बारे पत्ता लगाए।
6: अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ। अब यो सामग्री पछि यहाँहरू माझ राख्दैछौ एउटा गीतलाई बादल थापाको स्वरमा। गीतमा रचना तथा संगीत रहेको छ गायक स्वयंको। यो गीत स्वीकारौ। गीतपछि हामी अन्य विषय सामग्रीका साथ आउनेछौ। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला।